0: रूप जब ऐसा मिला, दिस इज द वॉइस ऑफ किशोर कुमार फ्रॉम द मूवी गंगा की सौगंध. ये वॉज 1978. लेट्स टेक इट बैक फ्रॉम द टॉप.
1: रूप जब ऐसा मिला ऐसी अरे मिश्री जैसी तोरी सूरतिया

0: Here is the second song from our movie song set. It's by Asha Bhosle, and the song is Aja Aja Mere Paas. Let's enjoy Asha Bhosle.
1: यहाँ देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है, बस मैं और तू।

0: Yes, we're going to continue with Kavanaugh song set with Mohammed Rafi. This one is
1: बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा
0: सौ बार जन्म लेगी सौ बार जन्म लेंगे हियर इज द वॉइस ऑफ मोहम्मद रफी टू कंटिन्यू विद आवर म्यूजिक सॉन्ग सेट बाय मोहम्मद रफी